I hope you enjoyed that song. The next one is third song of the movie, picturized on a funny song, by the way, very funny song picture on Kishore Kumar and Madhubala in a dream sequence. Note Kishore Kumar's funny singing. And the song is, this is Asha Bhosle Kishore Kumar duet, Main sitaron ka tarana, main baharon ka fasana, lekar ek angdai mujh par, dal nazar banda diwana. The response is, रूप का हो तुम खजाना तुम हो मेरी जान ये माना लेकिन पहले दे दो मेरा पांच रुपया बारह आना मारेगा भैया ना ना ना ना द कॉन्टेक्स्ट इज किशोर कुमार गोज टू कलेक्ट दी चार्जेस फॉर रिपेयरिंग मधुबाला स्कार बिकॉज शी हैड डन अवे विदाउट पेइंग हिम आई होप यू एंजॉय द सॉन्ग

0: फिल्म अनाड़ी के संगीतकार जोड़े का नाम इस कैसेट के इनले कार्ड पर भी लिखा हुआ है और आपके दिल पर भी। तो आइए उसी जोड़े में से जय किशन की आवाज में सुनिए उनके हमसफर शंकर के बारे में।
1: वो बरसात फिल्म बनने से पहले ही कुछ हम स्टूडियो के चक्कर लगाते लगाते एक दूसरे से मिल गए थे और उन दिनों में एक हारमोनियम प्लेयर की जगह खाली थी पृथ्वी थिएटर में। वो पहले से ही वहां पर कुछ तबला बजाने के लिए वहां पर मुकर्रर किए गए थे
2: शंकर भाई।
1: हाँ जी, और वो मुझे वहां लेके गए और मैं हारमोनियम बजाने के लिए वहां शामिल हो गया उनके साथ। शंकर साहब से अगर आप पहली बार मिलेंगे तो आपको लगेगा कि क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि थोड़ा सा डर सा महसूस होगा।
2: अच्छा अच्छा
1: और दूसरी बार मिलेंगे तो आप उनसे और प्यार करने लगेंगे।
2: अच्छा,
1: और तीसरी बार मिलेंगे तो उनका जो गुण और उनकी कला देख के आप उनके ही हो जाएंगे।
3: That was Amin Sayani talking with Jay Kishan about Shankar Jay Kishan duo. By the way, today, as I mentioned earlier at the start of the show, the Jay Kishan Daya Bhai Panchal passed away September 12, 1971. So today's show is kind of dedicated to his memory on the death anniversary of Jay Kishan Daya Bhai Panchal. The last song of today's first hour is from movie Black Cat. By the way, very quickly, if you need to communicate with the show with me, the easiest and the best way is via email. The dedicated email address for the show is musicofindia2015@gmail.com. And I'll be happy to respond to your suggestions, requests, and so on and so forth. The last song for today's first hour is Black Cat, from Black Cat 1959. Mohammad Rafi Suman Kalyanpur duet. Datta Nayak's music, Janasar Akhtar wrote the lyrics. The cast was Balraj Sahni and Minu Mumtaz, born Malkanasa Ali, Mahmood Ali's sister. It's a kind of a crime mystery movie. Balraj Sahni is looking for the notorious criminal Black Cat. He falls in love with Mumtaz, who happens to be sister of Black Cat. Also engaged in the chase is Black Cat. Black Cat is a private jovial.

भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना फ्रॉम मूवी छोटी बहन, लता मंगेशकर सिंगिंग फॉर नंदार ट्राइंग राखी टू हर टू ब्रदर्स बलराज सहनी एंड रहमान ऑन द ओकेजन रक्षाबंधन विच वॉज बाय द वे फॉर दिस ईयर जस्ट फ्यू डेज अगो लास्ट वीक और सो. द नेक्स्ट टू सॉन्ग्स फ्रॉम छोटी बहन आर कनेक्टेड इन द फॉलोइंग वे. बोथ ऑफ देम आर picturized Mahmood. The first one is a duet, Subir Sen, Lata Mangeshkar duet, Binaka number 7, picturized Very Happy Mahmood and Shubha Kote riding an open air tanga. And second one is Mahmood, picturized Mahmood playing a rickshaw to earn money, and that is a Mohammad Rafi solo. The first one was Hasa Jaipuri's lyrics, and second one is Shailendra's lyrics. Shankar Jaikishan, of course, were the composers. फर्स्ट वन इज मैं रंगीला प्यार कर रही दूर मेरी मंजिल शोक नजर का तीर ने मारा दिल हुआ घायल. रिस्पॉन्स इज तेरे लिए ही संभाल के रखा था प्यार भरा ये दिल तेरे इशारों पे चलता रहेगा ओ मेरे कातिल. बिनाका नंबर 7 1959. सेकंड वन बिनाका नंबर 13 इन 1959 मैं रिक्शा वाला है चार के बराबर ये दो टांग वाला. एंजॉय द टू सॉन्ग.

0: इसी मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: गिर गया हाथ से।
1: गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
2: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म,
3: मेरे पास वक्त नहीं फजूल बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा. पिक्चराइज मनमोहन कृष्णा एंड ही अर्न द फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड फॉर हिज रोल इन दिस फिल्म. वी आर प्रीटी मच क्लोज टू द एंड ऑफ टुडे शो. वेरी क्विकली वील कंटिन्यू विथ 1959 सॉन्ग्स नेक्स्ट वीक. चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, दिल दे के देखो, गूंज उठी शहनाई, दीदी, इंसान जाग उठा, काली टोपी लाल रुमाल, कन्हैया, शरारत, कागज़ के फूल, सॉन्ग्स फ्रॉम दिस मूवीज आर फीचर्ड नेक्स्ट वीक. लेट मी इंट्रोड्यूस द लास्ट टू सॉन्ग्स एंड आई विल गेट आउट ऑफ द वे फॉर माई कॉलीग डीजे कमिंग फॉर जैज इन द बाइबल बेल्ट राइट आफ्टर दिस शो. द next song is Asha Bhosle Mahendra Kapoor duet romantic song picture in Rajan Kumar and Nanda Karnataki. They are married at this time in the movie. They are out on a picnic. Jhukti hawa gaati hawa sapne jagaye nanha sa dil mera machal machal jaye. This is followed by the last song of today's show. Sudha Malhotra is doing the singing, a great singer by the way. She also composed music for couple of movies when the composer got sick or something, and she passed away very recently, unfortunately. This song starts with an alap, and the song is Kaise kahu man ki baat, raag is kafi and taal is teen taal and kairwa. Ha kaise kahu man ki baat, bari balamwa dukhiya kar gaye, sukh ko le gaye saath, kaise kahu man ki baat. Picture in Ashok Kumar, Mala Sinha in a booth watching this performance, and Rajan Kumar and Nanda in a adjoining booth enjoying the same show. Setting as a musical performance, the two couples are seated in adjoining booths, as I said, accompanied by the song is accompanied by well choreographed dance. Enjoy the two songs.